0: तिबरात्वात के कस्सो उधाई का गुइदा का मल्लागा दास्त आम्बारा कस्सा इमल्लागाए तो शावाई इफिर आना तुन लाकिन तु तीबरी कस्तो तिफिर आएदे
1: तु तिमासुने शाल्लत आम होई तिमिरना अरे शिबोतुआ रईबुआ इनमिताले तिमिरना सुआल तिबरीने औ ना दिया तेदने वात्सा थलगा तिहरी इमसौ तेदने नाई सकनाया नहुं लई थेनिन वाविन गुरहाई दोरी बुआ अरे यसुआ सीमोन बुतरुसित तुमितुएतीब हंकाय हदीदियाने तुनातीबुआ हदीदनी नियत